नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मन की शांति सबसे महंगा गहना है, उसे संभाल के रखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा में। अब से कुछ ही मिनट में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 200 6:35 पर। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। 7 बजे भूले बिसरे गीत। हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुनिए 7:30 पर। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। आलेख और स्वर है राजुल अशोक का। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक करण जोहर पर। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए सेहत नामा, थायराइड की बीमारी और उपचार। इस विषय पर डॉक्टर लीजा बनर्जी से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति है रामकरण मीणा की। 11 बजे सुनिए राम रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे तय करेंगे सुरीला सफर। दो बजकर 30 मिनट पर सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे। बांसुरी वादक पारसनाथ से बातचीत का पहला भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। पांच बजकर 30 मिनट पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। माफ कीजिएगा, 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग। 7 बजे आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 बजे सुनिए हवा महल में नाटक यादों की परछाई का दूसरा भाग। लेखन है सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशन है दीनानाथ। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। 10 बजे सुनिए छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्थ होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानि हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: श्रोताओ, स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों पर चर्चा की जा रही है आजकल संगीत सरिता कार्यक्रम में। और श्रोताओ, आप तो जानते ही हैं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: नमस्कार श्रोताओं, पिछले कड़ियों में मैं आपको सुना रही थी कुछ कर्नाटक शैली के रागों के बारे में, जिनके बारे में कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि कतन कुतूहलम, अमृतवर्षिणी और मंगलम, यानी कि सौराष्ट्रम और मध्यमावती रागों के बारे में। तो आज से शुरू करते हुए मैं आपको एक ऐसे वाद्यकार और संगीतकार के बारे में परिचय देना चाहती हूँ, जो न केवल दक्षिण के केरला प्रांत में एक जाने माने महाराजा थे, बल्कि एक सुविख्यात कंपोजर और कवि भी थे। इनका असली नाम तो लंबा था, श्री पद्मनाभ दास वंची भूपाल श्री रामवर्म कुलशेखर पेरुमाल, लेकिन लोग उन्हें स्वाति तिरुनाल के नाम से पहचानते हैं। इनका जन्म सन 1813 में तिरुवांकूर राजा के परिवार में हुआ और जन्म का तारीख था 16 अप्रैल। जन्म नक्षत्र स्वाति होने के कारण इनका नाम स्वाति तिरुनाल हो गया। तिरुनाल का मतलब है शुभ दिन और स्वाति तिरुनाल का अर्थ हुआ स्वाति नक्षत्र का शुभ दिन। इनके पिता राजराज वर्मा थे और माताजी का नाम था महारानी गौरी लक्ष्मीबाई। माँ का छोटी उम्र में ही देहांत होने के वजह से स्वाति तिरुनाल का पालन पोषण उनकी चाची पार्वती बाई ने की। अपने 16वीं साल में स्वाति तिरुनाल राजा घोषित कर दिए गए और उनका निधन 25 दिसंबर 1847 में हुआ, यानी कि वे केवल 34 साल जीवित रहे। इस छोटी अवधि में ही उन्होंने न केवल अनेक अति सुंदर कृतियां लिखी, बल्कि अनेक भाषाओं में भी पांडित्य दिखाई। कुछ कृतियां संस्कृत भाषा में हैं, तो कुछ हिंदी में और कुछ मलयालम में हैं। तो मैं आपको इनके हिंदी भाषा में बनाए गए उत्तर भारतीय शैली के रागों में किए गए कुछ कृतियां सुना रही हूँ। इनमें से कुछ ध्रुपद शैली में भी हैं और विशेषता ये है कि इनमें उत्तर और दक्षिण प्रांतों का एक अनोखा मिश्रण मिलता है, जैसे वृंदावनी सारंग, जय जयवंती, दरबारी कानड़ा इत्यादि। और भाषा भी उत्तर की है हिंदी, लेकिन ताल दक्षिण के, आदि ताल, देशादि ताल वगैरह। और इन कृतियों को मृदंग के साथ कर्नाटक शैली में गाएं या तबला के साथ उत्तर भारतीय शैली में गाएं, दोनों में उतना ही आनंद पा सकते हैं आप। तो लीजिए, आज पहले आपको महाराजा स्वाति तिरुनाल द्वारा रचित वृंदावनी सारंग राग में एक कृति सुनाती हूँ, जिसमें साहित्य हिंदी भाषा में है। कृति है चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि। यह कृति 16 मात्र के आदि ताल में निबद्ध है।

0: फिल्म चश्मे बद्दूर का ये गीत जो राग बृंदाबनी सारंग पर आधारित था अभी आपने सुना। आवाजें थी हेमंती शुक्ला और येसुदास की। कल इसी क्रम में आपको सुनवाया जाएगा राग धनाश्री। आप तो जानते ही हैं श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

0: ये भूले बिसरे गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। विको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साधना फिल्म के इस गाने के साथ। गीता दत्त की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति परख फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे मुगले आजम फिल्म से ये गाना, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।

गीता दत्त और मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे अपना घर फिल्म से ये गाना, प्रेम धवन के बोल रवि का संगीत।

0: तलत महमूद की आवाज में आप सुन रहे थे मालिक फिल्म से ये गाना, शकील बदायूनी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे बेवकूफ फिल्म से ये गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल सौम्य और उज्जवल बनाए। विको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: निर्माण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्यघर। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

उजाला फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इस गाने के पहले हम आपको सुनवा रहे थे गूंज उठी शहनाई फिल्म से गाना, जिसके बोल लिखे थे भरत व्यास ने। हमें राही प्यार के कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हम है राही प्यार के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना सट्टा बाजार फिल्म से, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ में।

0: सावन फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में गाना प्रेम धवन के बोल, हंसराज बहल का संगीत। इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से।

0: समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश

0: दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी

0: की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आज की त्रिवेणी में चलने की बातें। साथियों, चलती हुई हवा बंद हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। चलती हुई सड़क पर अगर कोई कार खराब होकर थम जाए तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और अगर चलती हुई घड़ी रुक जाए तो समय का पता ही नहीं लगता। समय के साथ चलना है तो घड़ी को भी चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन की घड़ी हो या शरीर की घड़ी, दोनों का चलते रहना ही अच्छा है। एक लंबी कतार भी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें खड़े लोग लगातार आगे चलते रहते हैं। चलना हमें वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले कल की ओर ले जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि

0: व्यक्ति का नाम ही गाड़ी होता है। चलना जीवन की निशानी है और सक्रियता की पहचान है।
1: बाजू।

चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वहीं जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन अबाध चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी जिंदगी चलती रहती है।

चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता, कई बार मन ही मन हम कहां कहां पहुंच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है, मन पर काई नहीं जमने देती बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से सवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार व्यवहार और विचारों को लगातार खंगालती रहती है। तभी तो कई बार लोग साथ ना मिलने पर भी अकेले ही चल पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यही तो जीवंतता है।

धरती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह को बोलते हैं गुड मॉर्निंग बचना ए हसीनो फिल्म के इस गाने के साथ। लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल,

बचना ए हसीनो फिल्म से आप ये सुन रहे थे गाना। इस गाने को लिखा था अन्विता दत्त ने और इसका म्यूजिक विशाल शेखर ने तैयार किया था। इसी जोड़ी का सुनते हैं अगला गाना दोस्ताना फिल्म से। विशाल ददलानी की आवाज में उनके साथ है श्रेया घोषाल और साथी।

मन मतवाला क्यों हुआ इसकी तो खबर नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा सा हिंट दे रहा है। कार्यक्रम का अगला गाना बैंड बाजा बारात फिल्म से। श्रेया घोषाल की आवाज, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है सलीम सुलेमान का।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।
2: अगला गाना फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

गजनी फिल्म से आप सुन रहे थे ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ ये बेहतरीन म्यूजिक। आइए अगला गाना सुनते हैं उन्हीं की कंपोजिशन में, युवराज फिल्म से, बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की आवाजों में गुलजार के बोल।

0: सेशन फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं यह संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनवाएंगे हम आपको टशन फिल्म से वो गाना, लेकिन बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: शनिवार शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला प्रायोजक।

सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतज़ार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतज़ार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतज़ार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, तुम्हारी सुलूफ। इस फिल्म से रोंकिनी गुप्ता की आवाज में शांतनु घाटक का म्यूजिक और लिरिक्स।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, जब हैरी मेट सेजल। इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। डीजे सुदक्षिणा को इजाजत और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: यस, हु इज इट?
2: डॉन।

0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, आज के फनकार। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: The noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
2: GNM, ANM, paramedical, BSc nursing, lab technician, जैसे courses के लिए आज ही join करें Chandni School of Nursing and Chandni College of Nursing, Vikas Nagar, Kanpur.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
2: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
3: आज फिर जीने की तमन्ना है।
4: श्रोताओं नमस्कार।
5: इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, इनू वेख जे कुड़िया तो कहंदी ओ
4: मांडा। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।
6: को

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

करण के पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

इस फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को माँ हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंप कर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

0: और फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।
1: बेस

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से, और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं, और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है, इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो, तो ये थायराइड है क्या? इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स, जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी, आपके शरीर को उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है? दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे T3 T4 शुरू होते हैं, ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना, सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है, होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए, कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कन्फर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है।
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं, खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते हमको लगता है कि हाँ अरे हमने

0: खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है,
1: सप्लीमेंट्स,
0: मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहाँ पे आप जो नेचुरली चीज़ें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं ज़रूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज़ एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें आप हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
1: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन, जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार, तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती है बीमारी तभी आते होंगे?
0: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है, कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए, हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
1: जी जी, आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर, तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती हैं, तो किस परिस्थिति में होता है, तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
0: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
1: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और
0: जी,
1: टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गोइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का।
0: जी,
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री

0: T3, फ्री T4, ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमको, पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी,
1: अच्छा
0: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग, प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है
1: अच्छा
0: और ये अनिवार्य है।
1: लेकिन मान लीजिए T3 या T4 में से कोई पॉजिटिव आ गया, जैसा
0: पॉजिटिव,
1: कि आपकी यूनिट के बाहर या कम जो
0: हाँ,
1: होता
0: रेंज के
1: है,
0: बाहर,
1: रेंज के बाहर,
0: हाँ,
1: तो आप क्या मानती हैं उसको?
0: नहीं, इस पे तीन चीज डिपेंड करता है, सिर्फ T3 T4 देख के नहीं होगा, TSH भी चाहिए।
1: अच्छा, तो उसमें अगर मान लीजिए
0: अगर
1: है तो क्या रेंज रहती है और क्या उसके लक्षण
0: जैसे
1: दिखाई देते हैं?
0: T3 और T4 अगर हायर साइड में है और TSH रेंज से नीचे है,
1: जी
0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं,
1: अच्छा
0: हाँ ठीक है, और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं।
1: जी जी जी
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए,
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये
0: हाँ,
1: लेवल क्या है
0: लेवल
1: बीमारी
0: क्या
1: का।
0: है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा।
1: जी, तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा।
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार,
0: काला बाजार।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने। तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज़्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज़्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
0: जी,
1: विटिलिगो मतलब सफ़ेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा है मतलब लूज
0: अच्छा
1: मोशंस।
0: जी,
1: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये
0: जी
1: बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
0: जी
1: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
0: त्वचा
1: होगा,
0: रोग,
1: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई दे के छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
0: इसका
1: क्या
0: रूट
1: है।
0: किधर है?
1: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी, जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है,
0: जी
1: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया है, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर लें या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है।
0: जी
1: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या जो
0: चिकित्सा
1: चिकित्सा है या उसका
0: आसान
1: जो
0: हो जाती है।
1: हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
0: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा, और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है। लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
0: चित्ररेखा फिल्म का गाना है
1: चित्ररेखा।
0: ये,
1: हाँ
0: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
1: जरूरत
0: लेकिन
1: है।
0: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लिजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया, जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे, डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही

0: ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
1: वो कैसे?
0: एक है मेंटल मानसिक और एक है फिजिकल।
1: जी
0: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
1: जी जी
0: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान
1: गुस्से
0: लाल
1: से।
0: होती है
1: हाँ
0: गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है, ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है,
1: जी जी
0: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान,
1: जी
0: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक,
1: फोबिया।
0: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की, एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
1: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
0: तब क्या, नहीं, तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
1: सब ठीक है।
0: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल।
1: जी
0: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
1: फिजिकल।
0: फिजिकल, उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो अलाना
1: वो सारी
0: फलाना,
1: विषैली चीजें,
0: हाँ
1: तत्व जो है अंदर रहते हैं।
0: हाँ तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिस बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया।
1: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
0: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
1: जी।
0: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं,
1: जी
0: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री, मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री,
1: जी
0: ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
1: इतिहास क्या है परिवार का?
0: परिवार का। अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
1: हेरिडिटी कैरेक्टर।
0: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है,
1: जी
0: उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे

0: पास आते हैं जो बोलते कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
1: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
0: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
1: बैजू बावरा
0: बैजू बावरा।
1: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का यह नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी, वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के, गूगल पे सर्च करके, सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए। इतना आसान नहीं है, मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है। प्लस

0: इन्वेस्टिगेशन का, जो ये भी जानना जरूरी है, हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
1: सही बात,
0: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
1: पसीना
0: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा, तो कैसे सिलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
1: लक्षण देख के
0: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
1: एक इंडिकेशन होता है,
0: एक इंडिकेशन, जैसे थायरोक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरोक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
1: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
0: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
1: क्या बात है,
0: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है, तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो, थायरोक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल, आयोडीन का पेशेंट उसी, अगर उससे देखा जाए वो बेचारा सा
1: मायूस सा
0: बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है, जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है, हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है, और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या क्रिश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते हैं, मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ रहा है।
0: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है? डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है, ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है, वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले
1: जी,
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है
1: जी। जी, और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी सिर्फ दवाइयाँ कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूँ तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो, तमुक करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो फल है खाना चाहिए,
0: खाना हो या फल हो ये खाइए, और पानी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए, इससे जब ज्यादा पानी पियोगे, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आप की खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
1: बहुत प्रेशर पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स किडनीज पे स्पेशली पड़ता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो,
0: यस, इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया।

0: और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा
1: तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है
0: जरूर।
1: रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार।
0: उतना ही
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
0: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो
0: बड़ी
1: चाइनीज फूड में
0: खतरनाक
1: ज़्यादा
0: है।
1: इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है आपने।
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए।
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
0: हाँ कम
1: इतना तो
0: कर
1: करना
0: दीजिए,
1: चाहिए
0: मैं
1: जी।
0: ये भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल।
0: कंट्रोल करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या, मन देता है।
1: जी
0: मन
1: जी
0: को आप ब्रेन के अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर
0: एक
1: चलते
0: अच्छा सा
1: चलते।
0: गाना चलते चलते मैं हूं।

0: कि हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में उपचार। इस विषय पर यह कार्यक्रम आपने सुना और उम्मीद है आप प्रतिक्रिया देंगे तो हमें पता चलेगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दुर्गा माँ, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजों में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा था और उन्हीं का संगीत। रंग तरंग में ये अगली पेशकश जॉगर्स पार्क फिल्म से, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम रंग तरंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हाल क्या है जनाब। जी हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा, फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और वेडनेसडे फिल्म से इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: चित्रा सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस गजल में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
2: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज ही आएं। विकास नगर कानपुर।
3: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए।
4: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।

होठों से छिलू तुम मेरा गीत अमर कर दो, प्रेम गीत फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में, इंदिवर ने इसे लिखा था।

आपकी कसम, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारे शब्द, काफ़ी सारे गीत आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है। तुम पास हो या ना हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हारी आंखें जैसे सागर की

गहरी सी बात तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात। एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है। वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है। सपना बनकर तुम ही तो आए थे दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में। ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना।

मुझको ये जाने वफा तुम याद आए, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायनी ने इसे लिखा और रवि का संगीत था। और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप सब ने एक दूसरे को, एक दूसरे का अभिवादन किया है, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और उसके अलावा एक श्रोता हमें लिखते हैं

0: इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहां प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां है। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेम युगल दिल को सहला देते हैं, तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कंपकपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती, बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सार जरूर अब तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की टीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है, जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ, बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया
1: आशवानी। लखनऊ है इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रेसिडेंट हाउस में मनकद नागरिक अलंकरण जलसे में साल 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सरफराज किया गया। जाने माने फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनके ताउन के लिए बादअज़मर्क पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। फिल्म अदाकार की अहिल्या और लोकसभा रुक्न हेमा मालिनी ने यह अवार्ड हासिल किया। बचाने वाले डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। पद्म विभूषण गैर मामूली और खुसूसी खिदमत के लिए, पद्म भूषण खुसूसी खिदमत के लिए और पद्मश्री किसी भी शोबे में खुसूसी खिदमत के लिए दिया जाता है। साल 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्डों को मंजूरी दी है। बकिया पद्म अवार्ड फातेहीन को बाद में मुनकिद होने वाले जलसे के दूसरे मरहले में अवार्ड से नवाजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 अवामी बहबूदी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। 413 करोड़ रुपए के लागत वाले इन प्रोजेक्टों की शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से मुतालिक पुस्तिमक्का का इजरा भी किया। प्रोग्राम में वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि लखनऊ नगर निगम को सफाई रैंकिंग में मुल्क में तीसरा मकाम मिलना एक बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि हमें अब लखनऊ को अव्वल नंबर पर लाना है। वजीर आला ने कहा कि नगर निगम के साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो लखनऊ को साफ और खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। वजीर आला ने कहा,
2: मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए।
1: हुकूमत मुल्क में पेट्रोलियम मसनुआत की हमवार फराहमी यकीनी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगरबी एशिया तनाजों पर कल नई दिल्ली में मुनकिद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई

0: के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: वज़ीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों को ख़त लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के री एग्ज़ाम को महफूज, हमवार और कामयाबी के साथ मुनक़िद करने की अपील की है। जनाब प्रधान ने पूरे मुल्क के सभी वज़राए आला, नायब गवर्नरों और हुकूमतों से इस मुतअल्लिक़ तआवुन तलब किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गांव पंचायतों की नई बॉडी तश्कील होने तक या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की मुद्दत के लिए आउटगोइंग गांव प्रधानों को गांव पंचायतों का इंतजामिया मुकर्रर किया है। रियासत के गांव पंचायतों के प्रधानों की मुद्दतकार आज खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के मुताबिक सभी जिला मजिस्ट्रेटों को गांव पंचायतों में आउटगोइंग प्रधानों को इंतजामिया के तौर पर नामजद करने का हक दिया गया है। ये सभी कल से इंतजामिया के तौर पर कामकाज संभालेंगे। इन सभी को सिर्फ मामूल के मुताबिक और रोजाना के कामों को करने की इजाजत होगी और उन्हें कोई भी हिकमत अमली का फैसला करने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत ने यह भी वाज़े किया है कि अगर किसी भी हालत में कोई हिकमत अमली का फैसला जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही यह फैसला किया जा सकता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 रोजा हज के पहले दिन कल आजमीन हज मिना के टेंट सिटी में जमा हुए। आजमीन हज आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक शदीद सड़क हादसे में और आस्थाना हलके के किलोमीटर 262 पर दिल्ली से गोरखपुर जा रही मुसाफिरों से भरी एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मकामी इंतजामिया ने फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और रसानी का काम शुरू कर दिया। दरियासना उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए सड़क हादसे में जानो माल के हुए नुकसान पर रंज का इजहार किया है। साथ ही मरने वालों के लवाहिकीन के तई सब्र की दुआ की है। दरियासना गुज़िश्ता शब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक हादसे में कैंची धाम जा रहे 4 अकीदतमंद जाँ बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। और कल पूरी रियासत में दिन भर की तेज धूप, शदीद गर्मी और लू के दरमियान रात में अचानक मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। रियासत के गोरखपुर और अयोध्या समेत कई दीगर इजला में गुज़िश्ता शब तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल शदीद गर्मी से कुछ राहत दी। अयोध्या और जौनपुर में भी आज सुबह तेज हवाओं और बारिश से मौसम तब्दील होने की खबर है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफर में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आज़ाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हमसफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बच गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज़ देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मान

अन्य उद्घोषकों की मधुर आवाज दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है। तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें, और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है, क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी ये एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियाँ पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल, और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग के ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं, और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है, और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूँ। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना बहुत जरूरी है, गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफ़ी लंबा मैसेजेस और काफ़ी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए मेंटली, इमोशनली, तो ज़रूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहाँ आप तक पहुँचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले, अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था, उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है। प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है। बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहां आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं। जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में, जो गीत हमने आपको सुनवाया, उसमें जो नज़र आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर। जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए, और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कि एक हो जाएं हम, तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो ज़रूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्म आया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में 2 से 3 अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन हैं, ये ज़रूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की ये जो सब बातें आज है वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना

उसका मजा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आंखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आंखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री है, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज है, त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में खयाम का संगीत था, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना। फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है, कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना। ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा, ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं, साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो, इंट्रो म्यूजिक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूँ मैं अक्सर। वहाँ चीड़ के ऊँचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियाँ साए साए करती है, वो आवाज़ सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं, खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है, मुझे बताएं।

रात कली एक ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर यह फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना। साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफ़र, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ। और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता

हमारी लिखती हैं कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी। जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है, वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपका अपना चहेता मन भाता लहराता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर आ रहा है आप तक इसी शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से 103.7 पर। रिकॉर्डिंग होगी दो दिन, बुधवार और गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए हमें कॉल करें 0512-254-1818 पर। हेलो कानपुर,
2: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIR KANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।

चलना एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के साथ ही जीवन के लिए भी जरूरी है। चलते रहने से जहाँ शरीर के कलपुर्जे रवा होते हैं, वही जीवन में भी गति बनी रहती है। इसी गति के कारण हमें याद रहता है कि हम अचल नहीं हैं। अगर कभी गति की लय टूट जाए, चलना छूट जाए, रास्ते बंद हो, तो जो थम जाता है वो पीछे ही रह जाता है। मगर जो कदम बढ़ाकर चलने की कोशिश करता है तो वो फिर रवानगी में आ जाता है। जीवन अबाध चलता रहे इसके लिए जरूरी है कि अगर आसपास कोई थमा हुआ या अचल दिखे, जो मन से टूट गया हो, तो उसे आश्वासन का हाथ देकर एक नई ऊर्जा दी जाए, उसे भी साथ चलने को प्रेरित किया जाए। रुके हुए को चलने का उत्साह देने से ही तो सबकी जिंदगी चलती रहती है।

चलने का मतलब सिर्फ कदम बढ़ाना नहीं होता, कई बार मन ही मन हम कहां कहां पहुंच जाते हैं। जिस तरह नदी की धारा स्वच्छ और निर्मल रहती है क्योंकि वो निरंतर बहती है, रुके हुए पानी में तो काई जम जाती है और वो किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह चलना भी एक ऐसी रिसाइकलिंग प्रक्रिया है, मन पर काई नहीं जमने देती बल्कि मन को निर्मल कर विचारों को बड़ी सुंदरता से सवार देती है। चलना एक किस्म की गतिशीलता है जो आचार व्यवहार और विचारों को लगातार खंगालती रहती है। तभी तो कई बार लोग साथ ना मिलने पर भी अकेले ही चल पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यही तो जीवंतता है।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना गम बाबा करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है।

0: आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: Action. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि

0: सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैं उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है, मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुँचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

0: कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले। इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, साथी नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमती फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ अच्छा। जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: हाँ, ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। कि नहीं भाई, अभी
1: अरे
2: तो
1: क्या बात करने वाली है आज
2: क्या बोलने वाली है
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाली
2: है। देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया, तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के

0: राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर
1: तो मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
0: नागनी मैम देखिए, नागनी जी क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना ये हर घर में होती है। कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सो सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीजें।
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। अच्छा। भी हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
0: बिल्कुल।
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें क्योंकि हम घर पर ही हैं।
0: हम घर पर हैं और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है,
0: आनंद भी आता है। और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना
1: तब
0: भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर सुनने को
1: ही अधूरापन मिलेगा। हाँ, व्यवस्था मिलेगी।
0: मतलब कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल है, ये तो है। अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
0: तो देखिए हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपनी मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
1: हाँ, लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही हैं।
0: आप बता सकते हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा है।
1: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है। हमारे अपने घर में ही कुछ लोग, हमारे अपने भाई बहन अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ आपको पापा ने एक और आपने बात मान ली,
0: हाँ।
1: तो आप कान की कच्ची हो इसका मतलब।
0: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी आए और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए थे। खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं, और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाग्नि जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करे। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भई आपको हम मौका दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्मसुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं, जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते हैं।
0: अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग। पानी चलता रहता है नलों से लगातार, आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखे, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए, आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा।
0: बिल्कुल,
1: आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार

0: व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम खुद सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय, रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है।
0: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: विकसित भारत है। और देखिए एक संदेश है मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होते ही वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
2: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
2: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं,
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं। हाँ। मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा।
2: हाँ।
1: तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
2: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना।
1: बिल्कुल।
2: तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
1: बिल्कुल
2: लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण

0: वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना मंदाकिनी जी?
1: बिल्कुल।
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है।
1: बिल्कुल है ना? है।
0: तो ये सफल, आप हंस रहे हैं ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात।
1: और ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी

0: कम पड़ जाती है क्योंकि जिस खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है।
1: बिल्कुल, है तो चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत की उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
0: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी हैं और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला है और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस shopclues की सह संस्थापक है। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
1: जी। और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई।
0: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से MBA की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से भी और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया
1: जी। और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
0: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना,

0: मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
1: जी, और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
0: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना?

0: अच्छा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है।
1: जी, और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और बाकी जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता
1: है। तो सबसे पहले तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी बातों में डिगा नहीं सकते, जिसे कहते हैं।
0: मतलब अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं, ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं, बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है, वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा। वहीं एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए।
0: मतलब ऐसे लोग जो होते हैं, जो बातों की होती है दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं।
1: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना
0: मतलब
1: निकालने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है, ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी, सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल। और ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था,
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल,
1: सादगी से वो जनवासा होता था, दिखावटी
0: नहीं होता। मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे। और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना वो लड़की वाले ही करते थे। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल आपने कहा, और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ जनवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही थे
1: और मन से
0: करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोबल नहीं किया गया,

0: है तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, बड़ा मजा आता था। लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं। तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासी का बड़ा महत्व है। यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बराती हो तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है। लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत होते थे जुहलबाजी टाइप की भी होती थी तो बड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है तो
1: सब अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई
0: होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: होटल में हो गई हैं, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे, तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं।
0: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर बाकी बात करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो मंजरी मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आँख बंद कर लिया, अंधेरा था चारों तरफ तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। हाँ। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी, एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए, रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया है कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते थे गर्म पानी समझ के ही पी लो तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक
0: मजा था। वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासे के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा यह जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, तो वो तो किसी और का बगीचा है। अब आम लगे हैं, अब बराती लगे तोड़ने में, अब वो फिर झगड़ा मच रहा है तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा, फिल्म ओ माई गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आप

0: का दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
1: जी।
0: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज ए म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
1: क्या
0: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
1: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
0: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
1: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
0: अलग है, बांसुरी वादक
1: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
1: क्या बात है।
0: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
1: जी।
0: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
1: और इन रागों में वाद्य वृंद
0: वाद्य वृंद बनाना, वो भी और उनके चलन के आधार पे
1: जी।
0: अब सा रे ग म प द नि ज नि द प म ग रे ज, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
1: 80 लोग,
0: हाँ,
1: ये मायने रखता है,
0: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
1: नगीने
0: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए जिनको, जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नि सा और SRGM, सारे
1: गामा पा धा, दोनों नोटेशन करते थे वो
0: पिताजी करते थे, हाँ। सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
1: जी जी।
0: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ, तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
1: जी।
0: तो मैं और पंकज नाथ जी हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे, तो वहां से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
1: बुनियाद पक्की हुई
0: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
1: जी,
0: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
1: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी?
0: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
1: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो है कुटुंबस।
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
1: जी,
0: तो और भी बदमाश।
1: तो आप क्या कारनामे करते थे?
2: हम लोग करते थे।

0: Saçma be kanka.
1: Sen var ya bu tane.
0: Ha thoda sa sharmar ho gaya. But haan badmashi karte the.
1: Bagicho se aam churaye, chori se film mein dekhi hai.
0: Bahut churaye humne aam churaye hain. और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है.
1: ओहो हो.
0: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है.
1: थोड़ा
0: इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी.
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था.
1: अरे बाप रे. फिर
0: पिताजी आए उन्होंने. अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा.
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे.
1: जी जी जी.
0: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने.
1: अच्छा.
0: इसको कर्मा
1: वापस आ गया.
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम. हाँ तो बदमाशी की है सर. हाँ कभी कभी स्कूल से जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
1: जी
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था.
1: अच्छा.
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था. सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे.
1: जी
0: बहुत स्ट्रिक्ट थे.
1: और जमाना भी सख्ती का था.
0: बहुत ज्यादा था. और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा. सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं.
1: कहीं और पहुंच गए.
0: तो ऐसी बदमाशियां रही. फिर खेलने चले गए
1: जी.
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए. तो ये मस्तियां की हैं. और पिताजी को पता नहीं होता था. और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या हाल होता.
0: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग.
1: कितना सख्त अनुशासन. आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही.
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड़ नहीं था
1: जी.
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं. सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है. मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
1: जी. ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा.
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी
0: अनुशासन में रहने का. जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है.
1: क्या प्यारी बात बोली है जी. रंगी पर...

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो हो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी।
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं, और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज
1: नहीं करते।
0: तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठाते थे वो, हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं

0: का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के स्वरूप से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी ला मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के,

0: तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की
0: चार
1: नींद,
0: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था, दिल्ली, आई बॉर्न बॉटम इन दिल्ली,
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी,
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी,
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे गजब।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग, तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30-5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल वैसा था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं,
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो सारी रात जागना है,
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है,
0: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज अनुशासन करते से, हुए,
0: रियाज करते हुए अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात है?
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप

0: को ग्रैटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है प्रोफेशन

0: महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी।
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है प्रोफेशन

0: हाँ। आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं।
1: जी जी जी।
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी।
1: जी।
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी। तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
1: हाँ।
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं।
1: जी।
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का हुल है।
1: जी।
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के,
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ झूठ बोलते लोग।
1: जी।
0: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
1: जी बिल्कुल।
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का
1: हाँ, नोट है। बिल्कुल है।
0: ठीक है
1: आखिर में।
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हमने तो बचपन से दिखा है।
1: जी।
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है। तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए।
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान है।
1: जी।
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले। जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही।
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी में बजा नहीं पाता।
1: कोई बात नहीं। तो आप
0: इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता।
1: जी। तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
0: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर मेरे हमारे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है।
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात।
0: ये मेरे फ्लूट किट में रहता है।
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था जो तीव्र माँ का ये है।
1: जी।
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है।
1: हाँ है,
0: है ना।
1: जी।
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का।
1: जी जी।
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं बेटे भी हैं शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं समझ में नहीं आता है।
1: तो वो बिल्कुल सही,
0: वो
1: है।
0: देखना पड़ता है।
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ हाँ।
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ।
1: ठीक है। और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं।
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा।
1: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए?
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो

0: अर्जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ, जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: शिशु होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है,
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता, मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था, और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: हाँ, वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था, तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक। गजब,
1: वो ये आशीर्वाद है।
0: जी जी जी।
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या करते
0: हैं। सवाल पीने जाई
1: जी,
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त, म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से, मतलब सुनने में, और अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी, वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर के में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मिठाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी, तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे, और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था, उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं, तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बलमा,
0: जी जी,
1: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
0: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
1: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना, तब का सुना हुआ है।
0: गजब।
1: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो, तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है, और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉरपोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहाँ बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप

0: सुनाइए ये गाना है। अब एक वो गाना है, मदर इंडिया का गाना है एक वो,
1: फूली आई रे कन्हाई।
0: हाँ। अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था तो
1: जी
0: वैसा था। तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान
0: हाँ,
1: फिल्म का
0: रजिया
1: गाना।
0: सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल
0: हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम।
1: जी
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी सेनाई, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक,
1: अच्छा
0: बहुत शौक।
1: क्या बात है।
0: एंड आई वॉज दी बेस्ट प्लेयर
1: अरे
0: इन द
1: वाह,
0: टीम,
1: तो
0: यस।
1: आप बॉलर थे या आप
0: मैं बॉलर ज़्यादा
1: ऑलराउंडर
0: बेहतर
1: थे?
0: था, ऑलराउंडर
1: अच्छा,
0: ही था ज़्यादातर, बट ज़्यादा बॉलर वाला काम था मेरा,
1: क्या बात है,
0: था
1: तो फास्ट बॉलर थे।
0: फास्ट बॉलर लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी,
0: नहीं।
1: लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि अब जब खेलते थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर
0: फिर
1: बस
0: खेल रहे तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं।
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो,
1: हाँ हाँ
0: कोई
1: बिल्कुल,
0: मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगाया कहाँ।
1: हाँ
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही
1: बस
0: गए बस।
1: जुनून के तहत खेल
0: हाँ,
1: रहे हैं।
0: वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: उनके
0: जैसे
1: मुकाबले।
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है और उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वैसा रहता था, दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो
1: ये
0: मजाक।
1: भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती
0: हाँ,
1: होगी।
0: महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
1: इशारा
0: दिया था,
1: किया।
0: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
1: अच्छा, ये कोर्स से बाहर का सवाल है।
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस,
1: फिर वापस ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते।
0: हाँ, स्टूडियो चलते ना
1: स्टूडियो
0: तो
1: चलते।
0: मजा आता
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताई। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ वहां पे
1: उनके
0: क्या,
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो।
0: जी हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त। तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी।
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी राग का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है,
1: हाँ, कंपोजिशन।
0: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे, उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत

0: सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी, बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी।
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: ये आपको घर से चौखट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसेयर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना, और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
1: जी।
0: तो पूरा एक हमारा चक्कर
1: लगता है।
0: तो वहां फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं, वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने, जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या
2: तो वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
2: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
2: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए।
1: इतने सारे लोगों
2: के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं, तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत
2: था। वही था

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 एफएम पर। लीजिए अब सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का झरोका।

हर रोज शाम 6 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं विविध रंगों से सजा कार्यक्रम विविधा। विविधा में आज सजेगी महफिल गजलों की। प्रोग्राम होगा शाम गजल।

किसी शब्द या विषय पर केंद्रित रहता है हमारा दैनिक कार्यक्रम गाने तराने, जिसे आप सुनते हैं हर रोज शाम 6:30 से। इस कार्यक्रम में हमने चुना है आज का शब्द दीवाना। शाम 7 से सुनिएगा हमारे फौजी साथियों को समर्पित कार्यक्रम जयमाला। हवा महल कार्यक्रम का समय रहेगा हर रोज की तरह रात 8:00।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
2: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज ही आएं। विकास नगर कानपुर।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर, हमारी जनगणना हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड इवनिंग डियर ऑल। कानपुर 103.7 एफएम पर आप ट्यून इन हैं विविध भारती के कानपुर केंद्र के साथ, और स्टूडियो से आपके साथ हूं मैं, आपका रेडियो दोस्त फरहान। आज की इस शाम में सबसे पहले मुबारकबाद उन जायरीन को, मुबारकबाद उन खुशनसीबों को जो इस साल हज को रवाना हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के इस आखिरी फ़र्ज़ को पूरा करने वाले चंद खुशनसीबों में से एक हैं।

जब अकीदत का समंदर हिलोरे मारता है तो सर्दी गर्मी बरसात सब छोटे पड़ जाते हैं। अब देखे ना इस वक्त कितनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी लोग हैं वो तो अपने कामों को पूरा करेंगे ही, पर गर्मी का आलम ये है कि इंसान और पशु पक्षी सब हैरान और परेशान हैं। मौसम की हम आपको पूरी जानकारी देंगे लेकिन इस सॉन्ग के बाद।

चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 मई को घने बादल छाए रहने के कारण गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर आने वाले 3 दिनों तक लू का प्रकोप फिर भी जारी रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 103.7 FM पर आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग कानपुर अपने रेडियो दोस्त फरहान के साथ।

और इधर आईपीएल का सफर मंजिल पर आ गया है। आज हमारे क्रिकेट फैंस की निगाहें धर्मशाला पर लगी रहेंगी, जहां आज आईपीएल 2026 का पहला क्वालिफायर मैच खेला जाना है। खूबसूरत एच पी

सीए स्टेडियम में आज शाम 7:30 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच जो मैच खेला जाएगा उस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी और आज की विनर टीम सीधे फाइनल में एंट्री ले लेगी। तो देखते हैं आज शाम 7:30 से कि आईपीएल 2026 में क्या होने वाला है। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले सॉन्ग्स की तरफ और एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की तरफ से ये सूचना दी गई है कि नैदानिक मनोविज्ञान विभाग और सेंटर ऑफ वेल बीइंग के संयुक्त तत्वावधान में 1 से 10 जून तक CSJMU कैंपस में करियर काउंसलिंग और पेरेंट्स काउंसलिंग कैंप लगाया जा रहा है। अगर आप इस कैंप में भाग लेना चाहते हैं तो फिर 1 से 10 जून तक में कोई भी समय निकाल लीजिएगा। 103.7 FM पर आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग कानपुर, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त फरहान।

के लिए एक नया अपडेट लेकर आया है। अब एंड्रॉइड यूजर्स को गूगल डॉक्स, शीट और स्लाइड्स के आइकॉन एक नए ग्रेडियंट डिजाइन में दिखाई देंगे। वेब वर्जन पर यह अपडेट गूगल साइट और क्रोम के न्यू टैब पेज पर लाइव हो चुका है और जल्द ही यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है ना बेहतरीन खबर। और एक नया सॉन्ग और बेहतरीन सा सॉन्ग भी हमारा इंतजार करता है, तो चलिए एंजॉय करते हैं।

करने में लगे हैं। ऐसे में आप उनको इग्नोर मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, सरकारी अभियानों की सफलता केवल कर्मचारियों से नहीं बल्कि जागरूक नागरिकों की भागीदारी से भी तय होती है। 103.7 FM पर अब एंजॉय कीजिए आज के गुड इवनिंग कानपुर प्रोग्राम का ये लास्ट सॉन्ग, और साथ ही दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त फरहान को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग कानपुर। यह आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम स्वास्थ्य चेतना। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर शैली अग्रवाल से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत का पहला भाग। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
4: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओह लवली, वेल डन।
4: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
5: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
6: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
5: आप कौन?
7: आरबीआई कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चेतना। कार्यक्रम का आज का अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैली अग्रवाल को, जो कि GSVM मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी में प्रोफेसर भी हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद दीपशिखा।
1: डॉक्टर साहब, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे जिसमें बहुत सारी समस्याएं महिलाओं को देखने को मिलती हैं, और वो विषय है माहवारी, जो कि महिलाओं के जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है, और उससे जुड़ा ही एक सब्जेक्ट है मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति। तो आज हम चाहेंगे कि मेनोपॉज से जुड़े कुछ सामान्य जो सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान आप हमारे श्रोताओं के लिए करें। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति आखिर होती क्या है।
2: सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आपने एक ऐसा टॉपिक चुना है इस अंक के लिए जिसपे हम कम बात करते हैं, जबकि महिलाओं का आप मान के चलिए एक तिहाई जीवन रजोनिवृत्ति के बाद ही व्यतीत होता है, और इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। रजोनिवृत्ति क्या होता है? जब माहवारी बंद हो जाती है उसको हम रजोनिवृत्ति बोलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे शरीर में जो अंडाशय होता है उसमें एक लिमिटेड नंबर एक्स होते हैं, और ये धीरे धीरे एक्स खत्म होने लगते हैं। जब एक्स की संख्या 1000 के करीब पहुंच जाती है तो जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे ये रजोनिवृत्ति हो जाती है। तो जब तक महीना 1 साल तक ना आए तब तक हम माहवारी बंद होना नहीं मानते हैं। तो माहवारी बंद होने के लिए ज़रूरी है कि आपका 1 साल तक आपका पीरियड ना आया हो, तभी हम रजोनिवृत्ति बोलते हैं। लेकिन ये अचानक नहीं होता है, इससे पहले कुछ बदलाव होते हैं महिलाओं के शरीर में, महिलाओं के माहवारी में। तो जो महीना होता है थोड़ा रुक रुक के आता है, चढ़ के आता है, और इस पूरे जो ट्रांजिशन होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। तो ये पेरीमेनोपॉज जो होता है कई कई बार 4-5 साल या अधिक समय का टाइम भी ले सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि रजोनिवृत्ति एकदम से नहीं होती है, यानी कि मेनोपॉज एकदम से नहीं आता है, बल्कि उसके पहले एक अवस्था होती है जिसको हम पेरीमेनोपॉज भी बोलते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि पेरीमेनोपॉज का जो एक समय होता है वो लगभग कितना महिलाओं के जीवन में हो सकता है, और क्या क्या लक्षण होते हैं उसके, हम एक बार वापस।

0: से जानना चाहेंगे।
1: महिलाओं में जो रजत निवृत्ति की आयु होती है, इंडिया के सिनेरियो हम देखें तो ये है 45 से 50 वर्ष की। कई बार कुछ महिलाओं में मान के चले अगर 45 से 50 साल में हो रहा है तो इससे 5 साल पहले का पीरियड जो होता है 40 के आसपास की जो अवस्था होती है पेरीमेनोपॉज में काउंट हो जाती है। इस समय आपके महावारी में थोड़े से बदलाव आने लगते हैं, जैसे पीरियड रेगुलर ना होकर थोड़ा इरेगुलर होने लगता है, थोड़ा ओवरड्यू होने लगता है, पीरियड का फ्लो कम होने लगता है और धीरे धीरे इस टाइप से ये कम हो जाता है। अगर किसी महिला के जो महीने की जो समस्या है, जो महावारी कम हो रही है, 40 साल से पहले शुरू हो रही है, तो उसको हम POI बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रीमैच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे जी। तो जब तक कि जो पीरियड है रुक रुक के जो आ रहा है एक साल तक ना आए, तब तक हम इसको पेरीमेनोपॉज की एज में ही रखेंगे। तो मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं 40 से 42 साल की उम्र में पेरीमेनोपॉज की अवस्था आ जाती है, जो कि महावारी बंद होने तक रहती है। महावारी बंद होते के बाद जो एक साल होता है वो पेरीमेनोपॉज में ही आता है, तो ये पूरी अवस्था पेरीमेनोपॉज की होती है। इस समय जो महिलाओं के शरीर में बदलाव जो आते हैं, एक तो महावारी का अनियमित होना, दूसरा थोड़ा वेट गेन होना, और जो वेट गेन होता है ये आपका जो सेंट्रल पार्ट है सेंट्रल ओबेसिटी की तरह आता है। इसके अलावा क्योंकि हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं इस टाइम, तो कुछ मूड चेंजेस भी होते हैं, कुछ हॉट फ्लशेस होते हैं, अचानक से गर्मी लगना, अचानक से मूड चेंजेस, कई बार तनाव ज़्यादा हो जाता है या कई बार एंग्जाइटी होने लगती है, तो ये सब चेंजेस भी हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। धीरे धीरे क्योंकि हार्मोन्स कम हो रहे हैं तो जननांगों में थोड़ा सूखापन, थोड़ा यूरिनरी दिक्कतें, ये सब भी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये सभी लक्षण पेरीमेनोपॉज को इंगित करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि प्री ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी एक टर्म होता है जिसका सामना कभी कभी 35 साल से ऊपर की महिलाओं को भी करना पड़ता है, तो हम जानना चाहेंगे इसके विषय में थोड़ा सा विस्तृत तरीके से आप हमें बताएं।
1: अगर 40 साल से पहले किसी महिला का महावारी 4 महीने तक रुक गई है
0: जी,
1: तो उसको हम POI की कैटेगरी में रखते रहें, और इस टाइम अगर महावारी टाइम से पहले बंद हो रही है तो उसके बहुत सारे स्वास्थ्य पे असर पड़ सकते हैं। तो इन महिलाओं में हमें कुछ जांचें भी करानी पड़ती हैं, कुछ हार्मोन लेवल हमें कराने पड़ते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि ये चीज़ अब POI की तरफ जा रही है। तो इस टाइम हमें उनको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हमारे लिए एक तो वुमेनहुड के लिए ज़रूरी है, दूसरा हमारे कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, बोन्स के लिए प्रोटेक्टिव होता है, तो इन महिलाओं में हमें स्पेशली रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। तो कभी भी किसी समस्या को आप ऐसा ना माने कि ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाता है। अगर 4 महीने तक महीना नहीं आ रहा है आपका और आयु आपकी 40 साल से कम है तो ज़रूर डॉक्टर से परामर्श करें, हो सकता है कि आप POI की तरफ जा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आजकल है यंग गर्ल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, तो शादी वगैरह लेट हो रही है, जैसे जॉब के चक्कर में है सबके, तो उस अवस्था में भी अगर POI की तरफ जा रही हैं तो कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, तो आपको उस टाइम भी डॉक्टर की हेल्प चाहिए होगी, ताकि कुछ और साधन अपनाने पड़ते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने अभी हमारे साथ साझा की, और कार्यक्रम में बातें अभी और भी होंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे सभी लिसनर्स को अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप सुनवा दें।
1: मेरी पसंद का एक गीत है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के, यह हमारी सभी महिलाओं को मैं डेडिकेट करना चाहूंगी।

0: ये खूबसूरत सा गीत सुनकर एक बार वापस आ चुके हैं अपने स्टूडियो में, जहां आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शैली अग्रवाल से, जो कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी में प्रोफेसर हैं और शहर की एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के बारे में बातचीत करना जरूरी क्यों है, इसका सामाजिक संदर्भ क्या है?
1: पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के बारे में हमें बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये ना केवल महिला को प्रभावित करता है बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है, और समाज में इसके बारे में जो जानकारी है, जो अवेयरनेस है, बहुत बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। महिलाओं का स्वास्थ्य पे तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, साथ ही कुछ मानसिक रूप से भी बदलाव आते हैं, शारीरिक रूप से बदलाव आते हैं। इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पूरे परिवार पर पड़ता है, क्योंकि कई बार आता है कि इस टाइम महिला का थोड़ा मूड चिड़चिड़ापन आ जाता है और परिवार उसको ना समझे तो घर में झगड़ों की नौबत भी आ जाती है, बच्चों से बहुत झगड़े होते हैं। तो जो पुरुष समाज है हमारा, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी जानना चाहिए कि माँ में ऐसे बदलाव क्यों आ रहे हैं, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की वजह से हो रहा है। इसके अलावा इस टाइम जो होता है, आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं तो आपका एक सेकेंड फेज ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है, तो इसको आप एक नए अध्याय के रूप में देख सकते हैं। तो क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे अपने स्टडीज़ में सेटल हो चुके हैं, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने पर ध्यान दें, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने खाने पीने पे, अपने व्यायाम पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
0: डॉक्टर साहब, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के विषय में आपने बताते हुए, हमने अभी आपसे बातचीत की तब आपने बताया कि बहुत सारे लक्षण भी होते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस का आना या चिड़चिड़ापन होना। तो ऐसे में जो महिला इससे गुजर रही है, उसको आराम लगे या कुछ आराम से इस फेज से अपने वो गुजर सके, इसके लिए कुछ उपाय बताना चाहेंगे आप?
1: जो ये लक्षण होते हैं, हॉट फ्लैशेस आना या चिड़चिड़ापन आना, एक तो सबसे पहले तो आपको सजग होना है, आपको पता होना चाहिए मेरे संग क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो इनएविटेबल है। महीना आपका आना बंद होगा, मेनोपॉज आएगा ही आएगा आपको। तो सबसे पहले तो आप जागरूक हों इसके लिए, आप तैयार हों इसके लिए। जो आपने बात की हॉट फ्लैशेस की, ये कई बार बहुत माइल्ड हो सकते हैं, कई बार बहुत सीवियर भी हो सकते हैं। माइल्ड होते हैं, जैसे कि होता है कि बस आपको हल्का सा गर्म लगा, पसीना आया एंड आप नॉर्मल हो गए। लेकिन यही चीज़ें अगर लगातार हो रही हैं, दिन में आपको 10 बार से ज़्यादा ऐसे एपिसोड आ रहे हैं, या आपकी नींद में व्यवधान पड़ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा पालपिटेशंस हो रहे हैं, तो ज़रूर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस टाइम आप ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, कंफर्टेबल कपड़े पहने, अपने रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखें, और जो आपके कैफीन युक्त पदार्थ हैं जैसे चाय कॉफ़ी, इनका सेवन कम से कम करें, शराब सिगरेट इनसे दूर रहें, योग प्राणायाम एक संयमित जीवन शैली अपनाना शुरू करें, बहुत मसाले वाले खाना ना खाएं। अगर आपके इन लाइफस्टाइल चेंजेस से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है और आपका सीवियर कैटेगरी में आ रहा है, तो ज़रूर एक स्पेशलिस्ट की सलाह लें। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, इसमें कुछ हार्मोन्स थेरेपी हम देते हैं, और आपके पूरी जांच करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हार्मोन्स थेरेपी हम नहीं दे सकते हैं, तो हम कुछ और नॉन हार्मोन थेरेपीज भी देते हैं। तो अगर लक्षण आपको ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, आपकी नींद में दिक्कत आ रही है, तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। और मैं ये और कहना चाहूँगी कि 40 ईयर्स के बाद

0: महिलाएं अपना चेकअप जरूर कराएं, एनुअल चेकअप, क्योंकि एस्ट्रोजन कम होता है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं हार्ट डिजीजेस के। तो अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं, अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं, अपना शुगर की जांच करवाएं, अपने हड्डियों की जांच करवाएं और इसके अलावा थायराइड की जांच करवाएं। तो इस साल में अपने लिए एक नियमित चेकअप का जरूर ध्यान रखें।
1: डॉक्टर साहब, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आज मेनोपॉज के बारे में आपने हमसे साझा करी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगले अंक में आपसे पुनः किसी अच्छे से टॉपिक पर हम बात करेंगे, आपको फिर से इनवाइट करते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
2: GNM, ANM, Paramedical, BSc Nursing, Lab Technician जैसे courses के लिए आज ही join करें Chandni School of Nursing and Chandni College of Nursing, Vikas Nagar, Kanpur.
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

बहुत बहुत खैर मकदम है आप सभी सुनने वालों का शाम गज़ल प्रोग्राम में। आज की इस खूबसूरत शाम को हम कुछ ऐसी गज़लों के नाम करने जा रहे हैं जो दिल की गहराइयों को छूती है, यादों को जगाती है और एहसासों को आवाज़ देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की शाम गज़ल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरहान।

कहते हैं कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। वक्त गुजर जाता है मगर कुछ लम्हे दिल के कोने में हमेशा जिंदा रहते हैं। इन्हीं एहसासों को बयां करती है आज की ये अगली गजल।

मोहब्बत जब सच्ची हो तो इंसान थोड़ा शायर और थोड़ा दीवाना हो जाता है। दिल की इसी गहराई और चाहत का अंजाम है ये कलाम।

0: जिंदगी में कभी कभी तन्हाई भी बहुत कुछ कह जाती है। भीड़ में रहकर भी जो अकेलापन महसूस होता है, वही मोहब्बत का असली इम्तिहान होता है। ऐसे ही एहसासों और जज्बातों की नजर, ये गजल।
1: हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आह छुपा दी जाए।

हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूर होकर भी दिल के बेहद करीब होते हैं। उनकी यादें मुस्कान भी देती हैं और आंखें भी नम कर जाती हैं। कुछ ऐसे ही जज्बातों से सजी है आज की इस शाम की आखिर पेशकश।

आप सभी ने शाम गजल को अपना प्यार और वक्त दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये गजल आपके मन को छू कर गई होगी। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही दीजिए मेजबान फरहान को इजाजत शाम गजल से। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे विविधा के अंतर्गत शाम गजल प्रोग्राम। ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने तराने। इंतजार बस कुछ ही देर का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
2: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज ही आएं। विकास नगर कानपुर।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

वेलकम अगेन ऑन 103.7 एफएम विविध भारती के कानपुर स्टूडियो से मैं आपका रेडियो दोस्त फरहान हाजिर हूं लेकर प्रोग्राम गाने तराने, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं उस लफ्ज या शब्द की जिसकी गिरफ्त में हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर रहे होंगे। ये लफ्ज एक एहसास है जो दिलों में जन्म लेता है। इसको हासिल करने के लिए जब इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, तब लफ्ज बनता है दीवाना।

दीवाना ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी फीलिंग है जो इंसान को आम लोगों से अलग बना देती है। जब कोई किसी के प्यार में, किसी ख्वाब में, किसी कला में या किसी की याद में पूरी तरह खो जाता है, तब दुनिया उसे कहती है दीवाना।

दीवानगी अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। जो इंसान भीड़ से अलग सोचता है, जो किसी रिश्ते को पूरे दिल से निभाता है, जो अपने सपनों के पीछे हर मुश्किल सह कर भी चलता रहता है, उसे लोग पागल या दीवाना कह देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में हर बड़ी मोहब्बत, हर बड़ी कला और हर बड़ा सपना किसी न किसी दीवाने ने ही पूरा किया है।

एक दीवाना इंसान छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है। उसे किसी की मुस्कान में पूरी दुनिया दिखाई देती है। वह टूट कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके दिल में एहसास जिंदा रहते हैं। उसकी आंखों में अक्सर नमी होती है, लेकिन वही नमी उसकी सच्चाई की पहचान बन जाती है।

103.7 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाने तराने अपने रेडियो दोस्त फरहान के साथ। जिक्र हो रहा है दीवाना का।

मोहब्बत में दीवानगी सबसे गहरी मानी जाती है। जब कोई किसी को बिना शर्त चाहने लगता है, उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखने लगता है, तब वह दिल धीरे धीरे दीवाना बन जाता है। ऐसे लोग अक्सर दुनिया की नजरों में हार जाते हैं, लेकिन वे अपने एहसासों में हमेशा अमर रहते हैं।

आज की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर मतलब से जुड़े दिखाई देते हैं, वहां किसी का सच्चा दीवाना होना नामुमकिन सा हो गया है। लोग अब दिल से ज्यादा दिमाग से रिश्ते निभाने लगे हैं। ऐसे समय में अगर कोई किसी के लिए सच्ची परवाह रखता है तो वो दीवानगी ही तो है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि दीवाना होना कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान के भीतर अब भी सच्चे जज्बात जिंदा हैं, क्योंकि जिनके दिल पत्थर हो जाते हैं वे कभी किसी के लिए दीवाना नहीं बन पाते।

तो ये था आज का गाने तराने कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत किया आपके रेडियो दोस्त फरहान ने। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें मेल पर ज़रूर बताइएगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी रात 9 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने तराने। ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। अब से बस कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे अपने फौजी साथियों को समर्पित कार्यक्रम जयमाला। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान

फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला में मैं प्रीति शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह ही कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे देशभक्ति गीत के साथ। तो पहला गाना हमने लिया है फिल्म होटल मुंबई से, इसे गाया है मिथुन, बी प्राग और सुनिधि चौहान ने। गीत संगीत मिथुन का है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जग

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत। गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में है। गीत रचना निदा फाजली की है, संगीत उषा खन्ना का। फिल्म का नाम आप तो ऐसे न थे।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, गीत गुलजार का है, संगीत राजेश रोशन का।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

अभी आपने मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजों में हम फिल्म का गाना सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
2: GNM, ANM, paramedical, BSc nursing, lab technician जैसे courses के लिए आज ही join करें Chandni School of Nursing and Chandni College of Nursing, Vikas Nagar, Kanpur.
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आई

0: aarkansomedia@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा, आकाशवाणी कानपुर, 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
1: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं शायरा अपूर्वा के लिखे इस गाने के साथ। स्नेहा शंकर ने इसे गाया है, संगीत अभिजीत श्रीवास्तव का है।

अभी आपने नेहा कक्कड़ की आवाज में जानी और ललित सेन का लिखा गीत सुना। संगीत तनिष्क बागची और ललित सेन का था। आइए अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज, गीत रश्मि विराग का, संगीत पायल देव का।

हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयां का दूसरा भाग। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: గుడ్ ఈవినింగ్ అంకుల్.
1: ఓ గుడ్ ఈవినింగ్ విక్రమ్.
0: హలో ఆంటీ,
2: అచ్చే హో వికీ.
0: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आंटी.
1: अरे भाई, ये बधाई वधाई तो खुद उसी को जाकर दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है.
2: तेरी बहुत नाराज है तुमसे, सब लोग तो कवि के आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो. वो बिल्कुल ऑफ मूड बैठी है.
0: आप फिक्र न कीजिए आंटी, देखिए अभी जाकर उसका मूड बिल्कुल ठीक किए देता हूँ. अरे कहाँ है सब लोग?
2: पिछले लॉन में है.

0: में नंबर टू है, 2 साल तक नंबर वन हो जाएगा। किवी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं और साल दो साल बाद तो।
1: अरे भाई मैं उसकी नेचर की बात कर रहा
0: हूँ। हाँ, अच्छा है अच्छा है। हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था, ग्रेट स्टोर का लेबल लगा हुआ था।
1: मैंने गौर नहीं किया।
0: ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है, हर चीज के दुगने तिगने दाम लगाते हैं। मगर ये जरूर है जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना। आप अखबार पढ़ रहे हैं क्या?
1: देख रहा हूँ।
0: कीवी से लकी गर्ल।
2: ओ हाय रिकी।
3: हाय।
0: ए आप आए हो हैंडसम?
2: हेलो ज़ाहिदा,
1: आज बहुत चहक रही हो
0: तुम जो आ गए हो।
2: I'm jealous.
0: तुम्हारी किस्मत दिल पर रहे ये नक्श, ये बेमहरिया तेरी जाना और इस तरह से कि मुड़ कर ना देखना। आदब अच्छे आदब अच्छे।
4: यार बड़ी देर कर दी आते हैं।
2: ओ हेलो चोपड़ा।
5: हेलो। अरे भाई कहाँ रहते हो यार?
2: तुम सुनाओ कहाँ रहते हो, साल भर बाद दिखाई देते हो।
5: क्या बताऊँ दोस्त, मेरी शादी जो हो गई।
0: मैंने कोई जंजीरें नहीं बांध रखी है भाई साहब।
2: नमस्कार भाभी, लीजिए आप तो फौरन ही डिफेंस पे उतर आए।
0: देखिए ना, खुद तो रात दिन ऑफिस में पड़ी रहती है और बदनाम हो बेचारी बीवी।
4: अभी तो
0: तुम्हें हार्ट बीट।
2: हार्ट बीट? अरे किशोरी क्या खिताब है भाई।
0: जनाब शायर हो चुके हैं और धड़कन तखल्लुस फरमाते हैं। मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया।
2: यार तुम तो अच्छे भले थे।
6: हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं।
2: आई जी ज़ाहिदा ये केस सीरियस है।
0: लेकिन इससे ये तो पूछ लीजिए कि वो है कौन।
2: भाई कोई होगी, हमें तुम्हें क्या।
0: मुसीबत तो यही है कि वो कोई भी नहीं है। ये हजरत गर्दन उठाए उठाए फिरते हैं लेकिन कोई भी पट्टा डालने को तैयार नहीं है।
2: ये बात
1: सुनो, कीवी कहाँ है?
0: जी बड़ी जल्दी मेरी याद आ गई।
1: ओ हेलो कीवी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो।
0: थैंक यू। आपके लिए क्या लाऊं?
1: नाराज हो कीवी?
0: नहीं तो मैं क्यों होने लगी नाराज?
1: नहीं तुम नाराज हो क्योंकि मुझे आने में देर हो गई।
0: ये शोर ये हंगामा कह कह की भीड़ भाड़, क्या कोई इसलिए पार्टी अरेंज करता है कि खुद अकेले पल का शिकार होकर कोने में दुख का पल पल किसी के आने का इंतजार करता रहे?
1: I'm sorry, Kiwi. Really?
0: मेरा जन्मदिन के साल में 10-12 बार आता है।
1: ये मैंने कब कहा?
0: तो फिर साल में एक बार भी तुम वक्त पर नहीं आ सकती।
1: ये बात नहीं कीवी कि मैं वक्त पे आना नहीं चाहता, पर क्या करता, बस उठते उठते कुछ खत आ गए थे, उनका जवाब आज ही जाना जरूरी था, बस वो खत्म करते ही मैं चला
0: गया। नहीं रुक सकते थे।
1: रुकने को क्या नहीं रुक सकता?
0: वक्त तो नहीं रुक सकता ना। चाहती तो मैं भी यही थी कि घड़ियां ठीक 6:30 बजे रुक जाए और जब तक तुम ना आ जाओ वो वही रुकी रहे। पर तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, तुम आ ही गए, मेरे पर यही बहुत एहसान है। अपने सबके सामने मेरी नाक कट जाती, पहले ही मेरी फ्रेंड्स मुझे बेवकूफ कहती है।
1: वो खुद बेवकूफ
0: नहीं, मैं सोचती हूँ मैंने ही अपने आप को बहुत गिरा लिया है, तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो।
1: कैसी बातें करती हो कीवी, तुम्हें क्या मालूम सिर्फ तुम्हारी खातिर आज मैंने कितनी इंपॉर्टेंट रिसेप्शन कर दी।
0: ना ना ना, मेरी खातिर क्यों मिस करते हो इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी? जाओ जाओ हो।
1: ओफो, मेरा मतलब ये नहीं था कीवी, तुम तो जरा सी बात को लेकर।
0: जरा सी बात है ठीक है, जरा सी बात ही तो है। अच्छा ठहरो मैं तुम्हारे लिए चाय ला।
1: कीवी सुनो तो। ओफो, क्या मुसीबत है, कौन समझता है। कमला भाई माफ करना, मुझे आते आते बहुत देर हो गई, क्या करता कोई स्कूटर ही नहीं मिला।
0: अब बैठ भी जाओ ना।
1: तुमने मुझे माफ कर दिया ना?
0: डोंट बी सिली, बात बात पर माफी मांगने वाले लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से अजनबी किसी गाड़ी में इकट्ठे सफर कर रहे हों।
1: तो तुम्हें कैसे लोग अच्छे लगते हैं?
0: जो चुपचाप आकर मेरे सामने बैठ जाए। लो टॉफी खाओ, बस आखिरी बची है, 2 मिनट देर से आते तो ये भी नहीं रहती।
1: अब तक कितनी टॉफियां खा चुकी हो?
0: पूरे 100 ग्राम लाई थी, तुम आए नहीं, इंतजार करती रही और इन टॉफियों के कागज उतार उतार कर इन रंग बिरंगे कागजों से बैले डांसर्स बनाती रही। देखो कितनी ढेर सारी डांसर्स बना डाली है।
1: देख रहा हूँ, अब क्या इनको नचाओगी?
0: किसी को नचाना आता होता तो बात ही क्या थी।
1: तो फिर इनका क्या होगा?
0: मुझे क्या मालूम,

0: अकेले वक्त नहीं कट रहा था ना, सुबह नह रही थी। अब तुम आ गए हो तो छोड़ो इन बातों को, मीठी टॉफी खाओ और कोई मीठी बात करो।
1: मीठी मीठी बातें सुनने का बहुत शौक है तुम्हें।
0: दो मीठे बोलों के सिवा जिंदगी में और रखा है क्या?
1: बहुत कुछ है कमला, बहुत कुछ। तुमने कभी इससे आगे सोचा ही नहीं।
0: सोचने समझने के लिए तुम जो हो। क्या फैसला किया है?
1: किस बात का?
0: बाहर जाने का।
1: जा रहा हूँ।
0: बहुत जरूरी है जाना? क्यों?
1: कमला, हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ना, एक बहुत बड़ी रेस है, जहाँ पिछड़े हुए घोड़े को लोग गधा कहते हैं।
0: लेकिन सभी घोड़े तो रेस में फर्स्ट नहीं आते।
1: लेकिन मैं किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। 2 साल विदेश में लगाकर जब लौटूंगा तो देखना मेरी कीमत कितनी बढ़ जाएगी।
0: बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी,
1: मुझे यकीन है।
0: फिर तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा।
1: जाहिर है।
0: फिर जितना होगा उस पर संतोष कर सकोगे, और ज्यादा पाने की इच्छा क्या खत्म हो जाएगी?
1: अगर एम्बिशन खत्म हो जाए कमला, तो मैं समझता हूँ जीने का मकसद ही खत्म हो जाए।
0: और तुम फिर उसके पीछे भागते रहोगे, भागते रहोगे, जीवन भर भागते रहोगे विक्रम। ये दौर कभी खत्म नहीं होगी।
1: लेकिन हौसला छोड़कर एक जगह बैठ जाना भी तो बुजदिली है।
0: मैं तुम्हें हौसला छोड़कर बैठ जाने को नहीं कहती, लेकिन डरती हूँ तेज चलते हुए पहियों के साथ भागते हुए कहीं तुम भी सिर्फ एक मशीन बनकर न रह जाओ। मुझे खड़खड़ाते हुए कारखाने की तमन्ना नहीं, मैंने तो एक छोटे से पुरसुकून घर का सपना देखा।
1: इस वक्त तुम्हारा ऐसा सोचना शायद ठीक हो, लेकिन ऐसा छोटा सा घर पा लेने के बाद जल्द ही वो घर बहुत छोटा सा नजर आने लगता है। तब कई नई ख्वाहिशें जन्म लेती हैं और उस वक्त उनको पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
1: अगर भरोसा न होता तो क्या तुम्हें इस तरह छोड़ के जाता? पर जरा सोचो तो, एक खूबसूरत जिस्म, खूबसूरत कपड़े पहनकर क्या भत्ता हो जाता है? तुम मेरे लिए एक अनमोल हीरा हो, उसे मैं पीतल की अंगूठी में जड़ना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए मुझे सोने की वो अंगूठी पैदा करनी है जिसमें जड़कर तुम्हें हर तरह की खुशी मिले और मुझे फख्र हो। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो कमल डार्लिंग।
0: डार्लिंग?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: तुमने मुझे डार्लिंग कहा विक्रम?
1: कोई पाप कर दिया मैंने?
0: भगवान के लिए मुझे कभी डार्लिंग न कहना।
1: क्या मैं तुमसे इतना दूर हूँ कि तुम्हें प्यार से पुकार भी नहीं सकता?
0: नहीं, ये प्यार नहीं।
1: तो
0: तुम डार्लिंग कहते हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से उकताए हुए पति पत्नी हैं। मुझे इस लफ्ज से सख्त बनावट की बू आती है।
1: तुम्हें मेरी और कौन कौन सी बातों से बनावट की बू आती है?
0: लो, अब तुम बुरा मान गए। विक्की साहब, माफी चाहती हूँ। काश आपको एक टॉफी और खिला सकती तो थोड़ी देर और मीठी बातें कर सकते।
1: चाहो तो वैसे भी मुँह मीठा हो सकता।
2: यार विक्रम, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ।
3: हाँ, योर अटेंशन प्लीज, मिस ज़ायदा एक गजल पेश करेंगी।
4: ओह नो,
2: ओह यस,
4: ओके ओके, क्या सुनाऊं? अच्छा, ऐश किया है।

0: तुम्हारी क्या ठंडी हो रही है विकी?
1: अरे मैंने देखा ही नहीं,
0: कहाँ खो गई थी?
1: भाई बर्थडे केक तो खिलाओ, मुंह मीठा करने को जी जा रहा है।
0: ओह आई एम सॉरी, माफ करना, मैं बिल्कुल भूल गई थी, अभी लाती हूँ।
1: ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
0: ये लो।
1: थैंक यू। अभी तक नाराज हो?
0: क्यों आए देर से? और आए भी तो दोस्तों में ही मस्त हो।
1: कहाँ गई भी, तुम ही को तो ढूंढ रहा था।
0: आई डोंट बिलीव यू।
1: अच्छा बाबा ना सही, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं?
0: कई तरीके हैं, लेकिन तुम तो जानबूझकर।
1: ओ सुनो अली बाओ,
0: हटो, देखो बाहर कोई आया है।
2: अरे केवी, ओ सॉरी, तुम्हारी फ्रेंड नीना है।
0: मैं अभी आई।
2: अरे भाई विकी, अम्मा अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है?
1: जूते खा रहा हूँ यार, जरा सी देर हो गई आने में,

0: कीवी इतनी नाराज है मुझसे, बस इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: यार अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, बाद में क्या होगा?
0: तुम तजुर्बेकार आदमी हो यार, तुम ही तो बताओ।
1: अब मेरा ख्याल है ज्यादा कोशिश करने से केस बिगड़ जाता है। तुम्हारे आने से पहले तो अच्छी बली थी, बस तुम्हें देखते ही मूड ऑफ हो गया।
0: जाहिर है, पहले मनाने वाला कौन था। ठीक है यार, अब देर सवेर हो ही जाती है, मांग ली माफी एक बार दो बार।
1: डोंट बी सो सीरियस,
0: आओ बाहर चलो।

यादों की परछाइयां। अभी आपने सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा भाग सुना, निर्देशन दीनानाथ का। इस नाटक का तीसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
2: GNM, ANM, paramedical, BSc nursing, lab technician जैसे courses के लिए आज ही join करें चांदनी School of Nursing and Chandni College of Nursing, विकास नगर कानपुर।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश। आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
5: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म यू टर्न से। इसे गाया है असित त्रिपाठी ने, गीत रश्मि विराग का है, संगीत आरको का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

मुनीत ब्रदर्स, परंपरा टंडन, पीयूष मेहरोलिया की आवाजों में सुनिए सत्य प्रेम की कथा फिल्म का गाना। गीत कुमार ने लिखा है, संगीत मीत ब्रदर्स का है।

ब्रेक के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना। इसे गाया है अभय जोधपुरकर ने, गीत इशात कामिल का है, संगीत अजय अतुल का।

आइए अब सुनते हैं स्त्री फिल्म का गाना। आस्था गिल, सचिन संघवी, जिगर सरैया और दिव्य कुमार की आवाजों में गीत वायु का है संगीत सचिन जिगर का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लोक कार्यक्रम समाप्त होता है। यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध

0: अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसंख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
0: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
2: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य

अजय अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। आपकी फरमाइश, इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
3: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
4: आपका अपना चहेता मन भाता लहराता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर आ रहा है आप तक इसी शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से 103.7 पर। रिकॉर्डिंग होगी 2 दिन, बुधवार और गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए हमें कॉल करें 0512-254-1818 पर। हेलो कानपुर।
5: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए

अंधेरी बावली मूसानगर से माजदा बेगम, नईम खालिक, शब्बीर रफत हबीब अली हैदर और इनके सभी साथियों ने डोंगर गांव से ये पत्र हमें मिला था। जिला छत्तीसगढ़ का है ये। राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय ने आप सभी की पसंद पर हमने आज शामिल किया आपकी फरमाइश का ये पहला गाना वक्त फिल्म से। अगला गाना हम ले रहे हैं संगदिल फिल्म से। आवाज़ है तलत महमूद की। राजेंद्र किशन के गीत को संगीत से सजाया है सज्जाद ने। ये पसंद है कस्बा अमरौदा उत्तर प्रदेश से अब्दुल जब्बार राइन, आरिफ तारिक, आकिब सईद, अनवर हमजा राइन, आरफा आयशा, आयजा संदीप राठौर, संदीप कुशवाहा। अकबरपुर से अमीर बाबू, उमाज राइन और रेशमा बेगम की। मध्य प्रदेश से ये पत्र हमें मिला है स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, देविका, दादा मराठा, भाऊ मराठा, परी संजना और ललिता का। मेल फरमाइश हमारे स्क्रीन पर है। गंज डुंडवारा एटा से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सायमा सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान की। आप सभी की पसंद पर फिल्म संगदिल का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का ये पहला सॉन्ग आप सुन रहे थे फिल्म वक्त से। आवाज़ थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। साहिर लुधियानवी के गीत को संगीत दिया था रवि ने। ये पसंद हमें भेजी थी।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए खलासी लाइन से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह राजपूत, हार्दिक राजपूत, प्रवीण सिंह राजपूत, श्रीमती प्रियंका बेबी, मोहम्मद साबिर, पवन शर्मा, गीता शर्मा और इनके पूरे परिवार की तरफ से और विश्व

तालुका नांदुरा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ, रक्षा ताई, ललिता संजना, गणेश कार्तिक, मालती, स्वाति और कुमारी देविका की पसंद पर फिल्म वीरजारा का ये गीत, आवाज़ है उदित नारायण की, मदन मोहन का इस ये गीत है और स्क्रीन पर जो फरमाइश इस गीत के लिए है वो है बीट शहर से आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल की, आप सभी की पसंद पर उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म वीरजारा का ये गीत। वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त फरहान।

आपके रेडियो सेट्स पर यह आवाज आ रही है टाइटल सॉन्ग अखियों के झरोके फिल्म से, जिसे पसंद किया है गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर, पप्पू, शेख शमा परवीन, अलकमर, अफसाना, महज अभिषेक और मिर्जा नसरीन ने।

लेवा खेल मोहल्ला से ललिता रानी, परिसंजना, गणेश कार्तिक, ब्रोनो, उषा। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत मोहम्मद रेहान, समरीन और माहिरा नूर। आवाज हेमलता की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त फरहान के साथ 103.7 एफएम पर विविध भारती के कानपुर केंद्र से। और अगला गीत हमने चुना है फिल्म फकीरा से, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत और संगीत एक बार फिर रविंद्र जैन का। ये पसंद हमें भेजी है रामेल नगर बिठूर से श्यामलाल बिट्टन, राशिद अड्डी भाई, गोपाल मेवा और नथु ने। दतरिंगी से भगवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू और सिंगापुर मावली से सालिक पुजारी। पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल और डी के अलवी।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत हमने लिया है फिल्म दादा से। आवाज है यशुदास की, कुलवंत जैन का गीत है और संगीत दिया है उषा खन्ना ने। ये पसंद हमें भेजी है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम बेग, आयशा हदिया, आसमा सालिया, सायमा मुस्तबा, आफिया और रऊफ ने। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार हैप्पी, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत ने ये हमें फरमाइश भेजी है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। आप सभी की पसंद पर यशुदास की आवाज में फिल्म दादा का ये सॉन्ग। वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन एफएम पर आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम आपकी फरमाइश। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त फरहान।

लीजिए आप सुनिए किशोर कुमार को फिल्म शर्मिली में नीरज के बोल हैं और संगीत है एस डी बर्मन का, पसंद है सचेंडी मेन बाजार से मनीष सैनी, कृष्णा श्रद्धा मोना मनु सैनी ट्वेंकल सैनी कल्लू सैनी और पूनम सैनी की। मेल फरमाइश है सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष मल्होत्रा बेबी गव्या और सुचिता पाठक की। एक मेल फरमाइश और है इसी सॉन्ग के लिए जो कि हमें भेजी है पंडपुर सिटी से प्रशांत सिंधे ऋषि यशराज सुनीता और रोहित दास चौक से ये मेल हमें करी गई है। आप सभी की पसंद पर फिल्म शर्मिली का गीत आवाज़ किशोर कुमार की। आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन 103.7।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत फिल्म कुदरत से, आवाज किशोर कुमार की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और आरडी बर्मन का संगीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु, अमोल, सार्थक, शिवांश, शिवा और इनके पूरे परिवार ने।

जैन मंदिर कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना और मोहम्मद कैफ का ये मेल हमें स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। खंडवा से मोहम्मद रफीक पमवार, मोहम्मद साकिब, छोटू और हसनैन। बाजार चौक दिलवाल से शंकरलाल, वनीता और रोशनी। खंडवा से कैलाश फूलमती, दीपक, समर और वेदिका।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से, और आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। राजेंद्र किशन के गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। ये पसंद हमें भेजी है अंधेरी बावली मूसा नगर से माजदा बेगम, एम नईम, एम जमील, सफिया अली हैदर, रफत हबीब, आरिफ सोनी आबदा, अकबरपुर से अनवरी बेगम, अनीसा बेगम, इकरा बेगम। आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से ये गीत, जिसके लिए हमें मेल फरमाइश दिख रही है नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले की, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और भानु खोरवाल। वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन एफएम पर आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम आपकी फरमाइश। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त फरहान।

फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में। पसंद सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापास, रेशमा और आदिबा। लोनी से परवीन डोम, शरफुद्दीन डोम, कुमारी वली, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा बेलदार, अकरम आसमा और उल्लाह बेलदार। न्यू ईदगाह कॉलोनी से मोहम्मद अहमद राइन, अबरार अहमद, शकीला बेगम, एम रहमान, सौरभ सोनवानी, एम के कानपुरी और आर के कानपुरी। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह।

0: और हमारे स्क्रीन पर है भोलागढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार की आपने बड़ा शिकायती भरा ये मेल हमें किया है, आपके नाम हमने शामिल किए।
1: धन्यवाद।

साजन फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में। पसंद है मंसूरी, रेडियो सुनने वाले बाजार रोड मुंगीसापुर से। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निसा, शबिस्ता, पलक लुबना, अलजिबा आयान और यश मंसूरी की। बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी बिट्टू साजदा और हिना कौसर की। मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैम और दिग्दर्शन की। आप सभी की पसंद पर साजन फिल्म का ये सॉन्ग। FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी फरमाइश। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त फरहान।

और अब कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत जो हमने लिया है फिल्म कभी कभी से, इस गीत को सुनना चाहा है बिजनौर से मोहम्मद बकार, इकबाल, सितारा, नसरीन, रोजी, बिट्टू और साजदा ने, हरियाणा से इंद्र, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव ने। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म कभी कभी का ये गीत। गीत रचना है साहिर की और संगीत है खयाम का।

इस गीत के साथ ही अब आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सलूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
3: प्यार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो न हो। चलो इन्हें संजो लें अपनी जिंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख की कोपलें हरी हो उठती हैं, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झड़ती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटखेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रहीं और

कानाफूसी करती रहीं पेड़ों से। रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

0: छाया गीत कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
3: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।

यादों के रंग से सजाए हैं ख्वाब। मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। ये ख्वाब सिर्फ इंतज़ार होते हैं।

यादें हमारी जिंदगी का आईना होती हैं, उसमें नजर आते हैं बीते समय। यादों का एक सिरा पकड़ते हैं कि बस चलचित्र की तरह जमाने भर की बातें हमारी आंखों के सामने ठहर जाती हैं। कई बार यादों का दामन थाम हम घंटों बैठे रहते हैं, खुद से गुफ्तगू करते भूल जाते हैं खुद को। वक्त का कौन सा सिरा आज है यही नहीं याद रहता, गुजरा जमाना है या है हकीकत। कुछ यादें हमें इतनी अजीज होती हैं कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

वही रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सूना सूना सा होगा। कहीं कुछ कमी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
3: इसका सलूशन
2: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे।
3: वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है, नेचुरल ब्यूटी वॉश।
4: Join the noble profession of nursing, where every day brings the opportunity to make a difference.
5: GNM, ANM, Paramedical, BSc Nursing, Lab Technician जैसे courses के लिए आज ही join करें Chandni School of Nursing and Chandni College of Nursing, Vikas Nagar, Kanpur.

0: अगर हेल्पिंग है आपका नेचर तो नर्सिंग में है आपका करियर।
1: GNM, ANM, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में करियर बनाएं। चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग आज ही आएं। विकास नगर कानपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी

0: अपने अभिनय से हम सब मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। इस समय रात के 11 बजे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब यहीं

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र 103.7 FM पर। इस समय रात के 11 बजे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब यहीं